You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
3: Awesome.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Akshay Kumar.
4: Hi, this is Anushka Sharma.
5: And I'm Ashwin Varsi.
6: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, एग्जीक्यूटिव लेंस, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
2: The primary idea behind any innovation or a business idea is to make people's life easier. One man is going to have a conversation with me about how he came up with an innovation which is going to make people's life far, far, far better, convenient and easy. On Executive Lens, Mr. Bassam Al-Ibrahim, co-founder and chief operating officer at PayLater. You have a contagious energy. Has anyone told you that?
3: No, first time. I think the feeling of being contagious is being around you. You also have it. So we share the PayLater, being the one of the co-founders and COO of the business, but also previously through my own, experiences of being a CEO in other countries, not necessarily even Qatar, but outside of Qatar, is that it's very important to know that if the information on hand that you have tells you one thing, but you have a gut instinct, and I trust my gut.
1: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar only on Radio Olive every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m.
4: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
5: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
6: ईद मुबारक.
5: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
6: आप?
5: चाचा, मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
6: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
8: ए, हलो हलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
10: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi, Radio Olive, 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
6: Shah Rukh Khan.
7: I'm number one, Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: मुबारक चाचा, ईद मुबारक।
3: आप
2: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
3: अरे मियां, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
4: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
5: ए, हालो हालो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चाचा?
6: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
7: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूर।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Paratma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Qatar's number one radio station.
7: Radio Olive 106.3 FM.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
2: नीना गुप्ता,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
3: ऑलिव सुनो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
5: Taufik chacha, Eid Mubarak.
6: Aap?
5: Chacha, main Ibrahim.
4: Har jumme raat aata hu
5: tumhari biryani khane ko.
6: Are miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
7: Ek kaam karte hain. इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
8: ए, हलो हलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
10: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Paratma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, एग्जीक्यूटिव लेंस, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
3: द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड एनी इनोवेशन और बिजनेस आइडिया इज टू मेक पीपल्स लाइफ easier. One man is going to have a conversation with me about how he came up with an innovation which is going to make people's life far, far, far better, convenient and easy. On Executive Lens, Mr. Bassam Al Ibrahim, co-founder and chief operating officer at PayLater. You have a contagious energy. Has anyone told you that?
4: No, first time. I think the feeling of being contagious is being around you. You also have it.
3: Also.
4: So we share the PayLater, being the one of the co-founders and COO of the business. But also previously through my own, you know, experiences of being a CEO in other countries, not necessarily even Qatar, but outside of Qatar, is that it's very important to know that if the information on hand that you have tells you one thing, but you have a gut instinct, and I trust my gut.
2: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive, every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m.
5: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
6: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
5: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
6: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए spectacular festival offer.
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्टिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: पंकज तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपकी नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर, बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स। एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज, शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश डफल बैग। यस, एब्सोल्युटली फ्री, बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर। हेड टू द न्यूली Open R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: मैं हूँ अनिल कपूर, Radio Olive, you are with us.
3: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: कौफिक चाचा, ईद मुबारक।
3: आप
2: चाचा? मैं इब्राहिम।
4: हर जुम्मे रात आता
2: तुम्हारी बिरयानी खाने को।
3: अरे मियां, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
6: हेलो हेलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ।
3: क्यों चाचा?
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
8: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बात।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव। डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव and win.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: कौफिक चाचा, ईद मुबारक।
2: आप
1: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
2: अरे मियां, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
3: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
4: हेलो हेलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चाचा?
5: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
6: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Bratma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Bratma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

Happy weekend. You are listening Radio Ale 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम Yes Tech Talk. और आज फ्राइडे है, सो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि एवरी फ्राइडे वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. सो टेक टॉक में आज पहली न्यूज लिटरली साइंस फिक्शन मूवी जैसी है. इमेजिन आपको फोन पॉकेट से निकालने की जरूरत ही ना पड़े. नोटिफिकेशन, मैप्स, मैसेजेस सब आंखों के सामने. अब आप कहोगे ऑफकोर्स ये तो पहले ही पता था, चश्मा आ तो गया है. पर ऑनेस्टली ये फैंटेसी नहीं है. डिफरेंट टेक कंपनीज ने स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज टेस्ट किए हैं. दीज लेंसेज रिपोर्टेडली फ्यूचर में नेविगेशन जो है वो शो करते हैं, हेल्थ डेटा ट्रैक करते हैं और जूम विजन भी सपोर्ट कर सकते हैं. और हेल्दियर साइड भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सम लेंसेज जो है वो ग्लूकोज लेवल तक और आई हेल्थ मॉनिटर करते हैं. मतलब डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी फ्यूचर यूजफुल हो सकता है. लेकिन ऑनेस्टली बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइवेसी. फोन तो हम साइड पर रख सकते हैं पर आंखों का क्या करोगे? मतलब इमेजिन एक्सीडेंटली एंड नोटिफिकेशन एड या आंखों के सामने पॉपअप हो गया और फिर क्या करोगे? हर जनरेशन की एक टेक्नोलॉजी होती है जो इम्पॉसिबल लगती है. पहले टच स्क्रीन पॉसिबल लगता था, फिर स्मार्ट वॉचेस और अब स्मार्ट लेंसेज. फ्यूचर थोड़ा सा मतलब स्मार्ट होने वाला है ये तो हमें पता है, लेकिन इतना स्मार्ट ये नहीं पता था. पर ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत स्मार्ट होने वाली हैं. बताती हूँ थोड़ी देर में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो फ्लाइंग टैक्सीज की बात करते हैं यहाँ पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM और ये है टेक टॉक. और आज ट्रैफिक इतना अनोइंग हो गया है कि दुनिया ने सोचा ऊपर से ही निकल जाते हैं. मतलब जैसे मेरे दिमाग से बात निकलती है ना एकदम ऊपर से, वैसे ही अब जो आपकी गाड़ी है वो निकलेगी. यस, चाइना जो है दुबई और US में फ्लाइंग टैक्सी प्रोजेक्ट्स काफी एग्रेसिवली टेस्ट कर रही है. इन्हें ईवॉल्व्स बोला जाता है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल्स, बेसिकली हेलीकॉप्टर प्लस टैक्सी कॉम्बो. और गोल बहुत सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस सिटी ट्रैवल विदाउट रोड ट्रैफिक. मतलब मैं ये सोच रही थी कि यार हम जैसे लोगों का क्या होगा जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते. चाइना में मल्टीपल पीपल टेस्ट ड्राइव, जो टेस्ट फ्लाइट एक्चुअली नॉट ड्राइव, ये वो लोग कर रहे हैं. और ऑनेस्टली अगर ये मेन स्ट्रीम हुआ तो फ्यूचर प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग होगी. बट आज ट्रैफिक नीचे है, ऊपर जैम होगा. मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब मान लो अगर ऐसा हो गया, फ्लाइंग टैक्सीज आ गई, तो जैसे नीचे ज़मीन पर हम जाम लगा देते हैं, वैसे हम ऊपर भी तो लगा सकते हैं यार हवा में. पर ये तो बाद में पता चलेगा. बट अब फॉर नाउ आई विल से कि मतलब फॉर मी, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ. जहाँ मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर जब मैं ऐसी टेक्नोलॉजी आते जाते देखती हूँ तो मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि यार आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: द बिग बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। यस, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: T-E-C-H. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त
6: है। अभी बजाएगा ना भिड़ो।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स टेक टॉक फ्राइडे है। आई एम श्योर आप कहीं ड्राइव करके जा रहे हो या फिर कुछ प्लान बना रहे हो, अगर अभी तक नहीं गए हो तो। हम यहां पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और गेमिंग चेयर्स अब सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, इंटेलिजेंट भी हो गई हैं। अब देखो, मैंने तो कभी बचपन में कोई गेम्स खेले नहीं है। मेरा भाई हमेशा गेम्स की तरफ जाता था, PS5 ये वो। आज भी उसको बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, पर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो आजकल एडवांस गेमिंग सेटअप्स में बायोमेट्रिक फीचर्स आ रहे हैं, मतलब गेमिंग चेयर हार्ट बीट मॉनिटर करेगी, पॉस्चर को डिटेक्ट करेगी कि आप कैसे बैठे हो, और आपका स्ट्रेस लेवल भी ट्रैक करेगी कि गेम खेलते खेलते आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अब फुल जो है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जैसी ट्रीट हो रही है। सो प्रोफेशनल गेमर्स भी एथलीट की तरह ट्रेन करते हैं अभी। और रीजन क्या है कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है गेमिंग, जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। सो सब मैटर करता है यार, मतलब स्पीड, फोकस, स्टैमिना, और लॉन्ग गेमिंग सेशन जो पॉस्चर है वो डैमेज भी कर सकता है, इसीलिए उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और ऑनेस्टली फ्यूचर गेमिंग सेटअप देखकर लगता है कि नासा कंट्रोल रूम जैसा दिखता है। सो मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर आपको किसी अपने को, दोस्त को, मतलब कुछ गिफ्ट करना हो तो यार ऐसे ही कुछ गेम्स वेम्स देखो जो उसको पसंद है। बाय द वे, मुझे तो इनकी कोई नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताओ कि आपके घर में भी क्या ऐसे गेमिंग सेटअप्स लगाए जाते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम टेक टॉक. भाई आज फ्राइडे है और फ्राइडे के साथ साथ मैं एक सवाल आपके लिए लेकर आई थी कि सडनली दुनिया को ये ट्रांसपेरेंट गैजेट्स क्यों इतने पसंद आ रहे हैं. मतलब नथिंग लाइक दैट, फोन के बाद ट्रांसपेरेंट टेक डिज़ाइन का जो ट्रेंड है वो काफ़ी वायरल हो रहा है. अब ईयरबड्स, लैपटॉप, फोन्स, कीबोर्ड सब ट्रांसपेरेंट एस्थेटिक में आ रहा है. और रीजन सिर्फ लुक्स नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कुछ और भी रीजन्स हैं. इंटरनल टेक लोगों को इसका पसंद आ रहा है, स्क्रूज, सर्किट्स, ये सब कुछ है इसमें जो मुझे लगता है कि नाउ लोगों को देखना पसंद है. सो मॉडर्न डिवाइसेस इतने क्लोज्ड और मिस्टीरियस हो गए हैं कि अब ब्रांड मतलब इंटेंशनली इनसाइड देखने लगा है. और नॉस्टैल्जिया भी ह्यूज फैक्टर है. 90s और अर्ली 2000s में ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी कॉमन थे. रिमेंबर ओल्ड कलरफुल गैजेट्स. टेक इंडस्ट्री बेसिकली ओल्ड एस्थेटिक्स को फ्यूचरिस्टिक बनाकर वापस लेकर आ रही है. सो ये तो भाई टाइम ही पता चलेगा, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इंटरनेट एक्चुअली कैसे चलता है पानी के अंदर, मतलब ओशंस के अंदर कैसे आता है आप तक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है टेक टॉक। डिजिटल डिटॉक्स गैजेट्स जो हैं वो बहुत ट्रेंडिंग है अभी। टेक्नोलॉजी से बचने के लिए भी टेक्नोलॉजी बन रही है। कैन यू इमेजिन भाई, आजकल मिनिमलिस्ट फोन्स और डिस्ट्रैक्शन फ्री गैजेट्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया रिमूव करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले कर देते हैं और बोरिंग इंटरफेस देखते हैं। मतलब फोन इंटेंशनली ये सब लेकर आ रहे हैं उनके इनबिल्ट फीचर्स में। क्यों? क्योंकि लोग नोटिफिकेशन फटीक फील कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरेज ह्यूमन reportedly hundreds of time phone check करता है daily। Can you imagine? मतलब मैं तो इसको imagine कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही यही करती हूँ। हर थोड़ी देर में बिना किसी reason के phone उठाया और बैठ गए और brain continuously dopamine hits का addicted हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है। मेरे तो भाई eye doctor ने भी बोल दिया है कि इतना screen देखोगे तो थोड़े time बाद बहुत मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। इसलिए digital detox industry suddenly huge हो गई है। Irony देखो, पहले companies हमें phone addicted बना रही हैं और फिर anti एडिक्शन गैजेट्स भी लेकर आ रही है। मतलब चित भी उनकी पट भी उनकी, कमाई तो उन्हीं की हो रही है ना बॉस। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल, वेरी यू नो माइंडफुल फॉर एवरीथिंग। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Hi everyone, main hu Arman Malik, 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindaas.
7: E-C-M.

एक तो आती है साइंस फिक्शन जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और दूसरा है भाई जो यूट्यूब पे कुछ साइंस वीडियोस आती हैं भाई, इतनी अमेजिंग होती हैं कि जब आप देखने जाते हो तो या तो आपको पूरा इंटरेस्ट आता है और पूरे दो घंटे की वीडियो आप देखते हो, या फिर आप दो मिनट में सो जाते हो। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? पहले मैं दो मिनट में सो जाती थी, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है तो मैं दो घंटे तो नहीं पर हाँ काफ़ी वीडियो देख लेती हूँ, फिर उसको अगले दिन कंटिन्यू करती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है टेक टॉक। आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल टेक्निकली जो है वो समुंदर के नीचे ट्रैवल करता है। आपको पता है मोस्ट पीपल थिंक इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, पर रियलिटी क्या है, अराउंड 95% एक्चुअली ग्लोबल इंटरनेट जो है वो ट्रैफिक अंडर सी केबल से ट्रैवल करता है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है वो ओशन के नीचे से, मतलब बिछे हुए ओशन के नीचे, और ये केबल्स इंटायर वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये सब जब मैं देखती हूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये सब बेसिकली पूरा एनिमेटेड दिखाया हुआ था। सो कभी कभी शार्क्स भी केबल्स को डैमेज कर देते हैं, यस रियलिटी है ये, और केबल डैमेज होने पर इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का बिगेस्ट सिस्टम है ये, लिटरली पानी के नीचे सब कुछ है और हम डेली इंटरनेट यूज़ करते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते ही नहीं है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनविजिबल टेक्नोलॉजीज इन ह्यूमन हिस्ट्री एक्चुअली। सो जब मैं ये सब वीडियोस देखती हूँ पूरा एनिमेटेड समझती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार क्या सोचा होगा, किसने सोचा होगा और कैसे सोचा होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार। लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और spectacular festival offer.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम टेक टॉक. बात कर लेते हैं भाई फ्यूचर में आपका सूटकेस खुद आपके पीछे चलेगा वाली. स्मार्ट रोबोटिक लगेज अब रियल प्रोडक्ट्स बन चुके हैं. मतलब मैंने कई सारे जापानीज और कोरियन रील्स देखे हैं जिनमें जो बैग है वही ट्रॉली बैग ही आपकी साइकिल बन जाता है जिसपे आप बैठ जाते हो और वो खुद ही एयरपोर्ट पे चलने लगता है, आपको चलना नहीं पड़ता. पर अभी एक नया और बैग आ रहा है जो कि सेंसर कैमरा और AI ट्रैकिंग के साथ होगा. मतलब एयरपोर्ट में सूटकेस खींचने की जरूरत नहीं है और ट्रैवल टेक काफ़ी रैपिडली इवॉल्व भी हो रहा है. मतलब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, डिजिटल बोर्डिंग और जो ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम है वो इसमें साथ में होगा. सो नाउ लगेज इटसेल्फ स्मार्ट हो रहा है, लेकिन इमेजिन ऑकवर्ड सिचुएशन. सूटकेस गलत इंसान के पीछे चला गया तो स्टिल कन्वीनियंट लगता है ना सुनने में, कि स्पेशली लॉन्ग एयरपोर्ट वॉक्स पे यार, मतलब आपको बैग खींच के नहीं चलना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं उठाना है, उसी में आपका लैपटॉप है, उसी में आपका सारा सामान है और वो आपके पीछे पीछे आ रहा है. एंड यू कैन शॉप, आप आराम से शॉपिंग करो एयरपोर्ट्स पे, ड्यूटी फ्री ट्राई करो. और ऐसे ही मतलब मुझे लगता है कि लाइफ धीरे धीरे धीरे धीरे ईजी होती जा रही है. बाय द वे, आई हैव वन किस्सा कहानी जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाती हूँ. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Pragma's Wholesale Market at Salwaru. Ample parking, convenient location.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: G-E-C-A.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस टेक टॉक. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट होती जा रही है. उससे मुझे एक किस्सा याद आया कि जब मैं किसी पुरानी एक आंटी से बात कर रही थी. पुरानी आंटी मतलब मेरी एक बहुत नोन पुरानी आंटी है. सो मैं उनको बोल रही थी कि आंटी आपने कितना कुछ किया ना पुराने टाइम में. यहाँ पर इतने गैजेट्स नहीं होते थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, किचन इतने क्यूब नहीं होते थे, और फुल टाइम खाना बनाना, सारी चीज़ों को संभालना, फिर बच्चों की पढ़ाई

खाई सारी चीजें, एंड शी वॉज लाइक कि तो हमने क्या नया कर लिया. मतलब मैं तो उनकी बात सुन के हैरान रह गई, क्योंकि हर आंटी यूजुअली यही कहती है कि हमने अपने टाइम में ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया. बट शी सेड मुझे तो आज की लड़कियों को देख के बहुत आश्चर्य होता है जो इतनी टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ नया सीख जाती हैं, गाड़ियाँ चलाती हैं, जॉब भी कर लेती हैं, बच्चों को भी मैनेज कर लेती हैं और घर के सारे काम भी कर लेती हैं, और सिर्फ कुछ यू नो नई चीज़ें सीख कर इक्विपमेंट्स की हेल्प लेकर. और मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा कि शायद कोई तो ऐसा है जो एक्चुअली आपको यू नो खुद से आगे समझता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है टेक टॉक. सो फ्यूचर इतना डिजिटल हो गया है, लोग पुरानी टेक्नोलॉजी अब मिस करने लगे हैं. एंड मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. बाय द वे स्पॉटिफाई पर स्किप करना अब ईजी है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आ रही हैं. ह्यूमन इमोशनली इम्पैक्टफुल थिंग्स से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं. ओल्ड कैमरास की ग्रेनी फोटोज़ या फिर कैसेट्स की साउंड का इम्परफेक्शंस, सब कुछ नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है. और फास्ट डिजिटल वर्ल्ड में अब लोग स्लो एक्सपीरियंस को मिस कर रहे हैं. समटाइम्स फ्यूचर का आंसर पास्ट में भी मिलता है, सो यू कैन फाइंड आउट. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान फनाव. आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. अपना ये बचा हुआ फ्राइडे अच्छे से इन्जॉय कीजिए. सुनते रहिए Radio Olive. Bye, take care and stay tuned. Jio, Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

हेलो भाई, काम का बोरिया बंद गया क्योंकि वीकेंड का टशन चालू हो गया भैया। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ और वीकेंड शुरू हो चुका है, तो छोड़ो स्ट्रेस का ड्रामा और चालू करो फन का राग। आज के शो में मिलेगा आपको मस्ती का फुल डोज, बॉलीवुड की बातें और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, लिसनर्स की यादें और कुछ थोड़ा सा मसालेदार नॉस्टैल्जिया। तो जनाब लगा लो पॉपकॉर्न और रिलैक्स हो जाओ। आज का शो है लाइफ का असली रिचार्ज का रास्ता, तो माइक हो या मूड का ब्लास्ट, सुन रही रेडियो ऑलिव जियो पिंदास।

जब फ्राइडे आए तो समझ जाओ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजी आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ और हर वीकेंड एक नया हीरो एंट्री लेता है। कभी डैड का रिमोट स्नैचर बेटा, कभी मम्मी का शॉपिंग बड़ी। बॉलीवुड में एंट्री स्लो मोशन में होती है, लेकिन वीकेंड में तो एंट्री केवल ग्रोसरी स्टोर्स में बैग लेकर होती है। वैसे जिंदगी के हर रोल में थोड़ा हीरो बनो, थोड़ा कॉमेडियन, क्योंकि वीकेंड का शो तभी तो बनता है सुपरहिट सीन। तो जनाब, फैमिली हो या फिल्मी कास्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Bradma's Wholesale Market at Salwar Road. Ample parking, convenient location. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

देखो हर वीकेंड पे क्या होता है ना, कपड़े नए मूव्स ओल्ड, बस कैप्शन हो थोड़ा सा बोल्ड तो कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, आप ही वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वैसे वीकेंड्स पे रील्स का सुनामी होता है, सब करते हैं स्लोमो वॉक और डांस जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और कैप्शंस वीकेंड वाइब्स ओनली। भाई सैटरडे भी आएगा यार, वैसे लाइक्स के पीछे भागना ठीक है पर मुझे क्या लगता है ना कि रियल स्माइल की रील बनाना और भी बेटर है। तो जनाब रील हो या रियल की मस्ती, हर बंदा हर गाना सुन के हो जाए खुशनुमा हस्ती। तो आप भी सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, सी यू पिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
8: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
9: Cool song.

0: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
1: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासों फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

जनाब बॉलीवुड का प्यार यादों का पिटारा ट्रिविया टाइम आ गया ना दोबारा 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज। मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब। बताइए कौन सी मूवी का सॉन्ग है तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऑप्शंस भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और बता दीजिए किसको देखा था जाना सनम और ये वाला गाना गा के उन्हें प्रपोज किया था या फिर आज भी उनके साथ फ्लर्टिंग करते।

सुनो, गेस करो और रेडी रहो जवाब के लिए नेक्स्ट सेगमेंट में। आ रहा हूँ, आपको एक बढ़िया सा गाना डेडिकेट करूंगा जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा। बाकी दिमाग का हो या दिल का ब्लास्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ जियो पिंडास।

भाई जवाब तो मिल गया सही और आप ही हो जनाब बॉलीवुड के असली भाई। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज जनाब, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे राज और सिमरन की यादों का क्लासिक, क्या बात है। ये जवाब दिया है हर्षित ने। भाई हर्षित, आपके लिए एक गाना तो मैं भी डेडिकेट करूंगा। ऐसे फिल्मी रहो, क्योंकि वीकेंड हो या जिंदगी, इमोशन से ही तो इमोशंस जुड़े हैं भाई। वैसे भी ट्रिविया हो या दिल का रास्ता, रेडियो ऑलिव के साथ गुनगुनाते रहिए और बॉलीवुड से बना रहेगा आपका यही वास्ता। जियो बिंदास।

अच्छा, जैसे एक टाइम था जब वीकेंड का मतलब होता था रंगोली और नींबू पानी, टीवी पर देखना है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और अब तो नींबू पानी की बहुत जरूरत है भैया, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी जो पड़ रही है। वैसे याद है बचपन की वीकेंड, टीवी पे शक्तिमान, मम्मी के साथ का हलवा और फ्रेंड्स के साथ साइकिल राइड्स, नो फोन नो फोमो। वैसे आज भी अगर एक चाय और पुरानी याद मिल जाए ना तो पूरा का पूरा वीकेंड गोल्ड बन जाता है। तो जनाब, नॉस्टैल्जिया हो या यारी का ट्रस्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और spectacular festival offer.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Radio

अच्छा आज तो बस रेस्ट करना, आज तो वीकेंड है, ये बोलने वाले जानते हैं कि ये सब झूठ है भैया। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ और वीकेंड वाला झूठ हो गया वायरल। सब करते हैं पर कोई नहीं मानता हाल, वैसे कुछ क्लासिक झूठ। आज तो फोन साइड पे रखेंगे लेकिन रील देखते देखते बैटरी भी गायब। बस एक एपिसोड देखना है ये कहकर नेटफ्लिक्स की स्क्रीन इतनी देर तक खुली रहती है कि सामने से लिखा आता है आर यू स्टिल वॉचिंग। वैसे वीकेंड पे हम सबके अंदर ना मैनेजर जैसा आदमी छुपा हुआ होता है, प्रॉमिसेस ज्यादा डिलीवरी थोड़ी लेट। पर आपको क्या जनाब, आज तो वीकेंड है, झूठ हो या चिल्का ब्लास्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर, बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स। एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज, शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश डफल बैग। यस, एब्सोल्युटली फ्री, बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर। हेड टू द न्यूली ओपन R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
4: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
4: Rafiq chacha, Eid Mubarak.
6: Aap?
4: Chacha, main Ibrahim. Har jumme raat aata hu tumhari biryani khane ko.
6: Are miyan, Tawfiq chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhul gaye. Biryani bhi.
7: Ek kaam karte hain. इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
8: ए, आलो आलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
10: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासों फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.

देखो एंजॉय योर वीकेंड गाइस बोलते सब हैं, पर काम भेजते भी वही मैनेजर हैं जो ये बात बोलते हैं, है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं वीकेंड का असली वार ऑफिस के व्हाट्सएप पर। फ्राइडे 5:55 PM पिंग आता है, जस्ट अ क्विक टास्क, और सैटरडे को 11 AM वी माइट नीड दिस बाय संडे। यार वीकेंड का ना नमक कम हो जाता है बॉस की हर लाइन के बाद, इसलिए जनाब कहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ो भाई, ऑफिस चैट के म्यूट बटन को दबाओ जरा, और पिंग हो या मूड का ब्लास्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और बोलते रहिए जियो पिंदास।

0: यार पूरा हफ्ता स्ट्रेस में, जहाँ ऑफिस वाले आपके साथ खेलते हैं, आपके जज्बातों के साथ खेलते हैं, कोई नहीं ना अगर वीकेंड पे आप थोड़ा ज्यादा पबजी खेलते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ और बात करते हैं वीकेंड के असली वॉरियर्स गेमिंग वालों के साथ। अगर आपका कोई रूममेट है या फिर फ्लैटमेट है जो कभी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, कहीं घूमने नहीं जा पाता क्योंकि उसके गेम ही नहीं खत्म होते। वैसे मुझे ये लगता है ना, गेमर्स के दो ही टारगेट होते हैं, कंट्रोलर हाथ में होता है, मूड हाई, बस एक ही टारगेट होता है, लीडर बोर्ड पे टॉप या अपने रूममेट या मम्मी पापा की डांट से बचना। लेकिन जो बोलो, वीकेंड के दिन वो रात के 2-2 बजे वाले गेम, नींद सेक्रीफाइस और वाईफाई पे विश्वास। वैसे गेमिंग का लेवल तब ऊपर जाता है जब वीकेंड पे नींद के साथ दोस्ती छोड़ देते हो। तो गेम हो या फ्रेम का ब्लास्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, चियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

0: देखो होल वीक डाइट करते हो पर फ्राइडे नाइट पिज्जा प्लस फ्राइज, हैप्पी लाइफ। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ और वीकेंड का मतलब होता है, बल्कि हैप्पी वीकेंड का मतलब होता है कैलोरीज से दोस्ती और डाइट का ब्रेकअप, है ना। वैसे सब कहते हैं बस एक बाइट, पर वो एक बाइट बन जाता है फुल ऑर्डर प्लस डेजर्ट। कई बार तो मुझे लगता है आपके फोन की फिटनेस ऐप भी सोचती होगी, छोड़ भाई तू तो होपलेस है वीकेंड पे, और मुझे और होपलेस कर देता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं यार, हफ्ते में एक ही दिन तो है, वीकेंड पे गर्ल फ्री चीट करो, क्योंकि टेस्ट भी एक इमोशन होता है यार, और गाना भी। तो गानों के साथ अपनी मील्स को एंजॉय करो, बर्गर हो या फ्राइज का ब्लास्ट, आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: वैसे ना कभी कभी कुछ ना करना भी सब कुछ होता है, यही तो होता है वीकेंड में, है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और चलिए बात करते हैं उन खाली मोमेंट्स की जो वीकेंड को मेमोरेबल बनाते हैं। वो बेड पे लेटे रहना, वो विंडो से बाहर देखते रहना बिना किसी वजह, या वो चाय के साथ साइलेंस का टेस्ट लेना प्राइसलेस होता है ना। वैसे जिंदगी के फास्ट फॉरवर्ड में वीकेंड वो पॉज बटन होता है जो दिल को रिवाइंड करने का मौका देता है। तो खामोशी हो या दिल का ब्लास्ट, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
4: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Pay Back is back.
2: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies' bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
1: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eve.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे थे हम। इस शो में मिले हम आपके दिल के हर कोने से, कभी नॉस्टैल्जिया, कभी फिल्मी बातें, कभी चीट डे और कभी ग्रुप चैट के झटके। वैसे वीकेंड छोटा जरूर होता है, पर अगर दिल से जिया जाए ना तो हर फ्राइडे एक कहानी बनती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हैप्पी वीकेंड में, पर आप मुझे मिड नाइट लाउंज में रात को 10 से 12 बजे भी सुन सकते हैं, सैटरडे टू वेडनेसडे। ये दिल की आवाज ऐसे ही आपके दिल को धड़काती रहेगी बढ़िया बढ़िया गाने चलाकर, और ऐसे ही आपके सफर को खूबसूरत बनाती रहेगी, चाहे वो सफर जिंदगी का हो या गाड़ी का। क्योंकि मस्ती हो या दर्द का रास्ता पास, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो फिन।
1: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: अंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग
1: रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।